आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

सही बात है। और आज है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, तो वो सेलिब्रेट किए बिना कैसे चलेगा ब्रो? याद आ जाना चाहिए इतना सुन के ये वाला गाना, आइकॉनिक दोस्ती का गाना है, वो सुनेंगे कुछ ही देर में। और साथ में आज सोनू निगम इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, तो थ्रू आउट द डे आप सोनू निगम के स्पेशल गाने सुनने वाले हैं। और मतलब इतने हैं कि यू लाइक यार टाइम कम पड़ रहा है यार। बहुत सारी बातें करने की, आपको मेरी जो एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म सुनाई दे ही रहा होगा क्योंकि वीकेंड है जी, बनता ही है ये तो। 3311106 पर आ जाओ फटाफट, स्टे ट्यून्ड एंड जियो विंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजेस और निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और मैं तो बहुत अच्छे से वेकअप हो चुकी हूँ क्योंकि आ गए हैं प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग मैसेजेस एंड नाज़नी जी कहती है गुड मॉर्निंग यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग सो योर बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर लिविंग इज टू मेक द बेस्ट एंड मोस्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट एग्जैक्टली आज में जियेंगे ना तभी ठीक रहेगा क्योंकि कल की चिंता करते करते आज को भी वेस्ट कर देना सेंस बना रहा है क्या ये कभी नहीं बना रहा है तो मत करो यार और शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है वो कहते हैं सिंपल मैथ्स टू गेट एंड टू गिव क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स सो जस्ट डबल इट फॉरगेट एंड फॉरगिव सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स ओ माय गॉड दैट्स ब्रिलियंट राइट आई मीन द वे इट हैज बीन पुट टुगेदर इट्स रियली अमेजिंग हम हमेशा लेने देने के बारे में सोचते हैं यार जाने दो कोई बात नहीं लाइक समबडी हैज हर्ट मी आई हैव टू हर्ट देम बैक नहीं उससे कोई भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है उल्टा गिल्ट ट्रिप पे चले जाओगे कि यार मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था यार मैं तो ऐसी नहीं हूँ यार सो इट्स ओके फॉरगेट एंड फॉरगिव ठीक है और संधू जी का भी गुड मॉर्निंग आ चुका है गुड मॉर्निंग हरपाल संधू जी देन बिलाल जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया हैप्पी वीकेंड टू यू टू इकबाल खान का गुड मॉर्निंग मैसेज आया है लियाकत जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया है अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू मेरी जान और जो अभी ड्राइव कर रहे हैं Those who are going to work, you know, सुबह सुबह जो काम पर जा रहे हैं और अगर बस में मुझे इस वक्त सुन रहे हैं तो आप सबको भी एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग मेरी जान आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे और सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर लेकिन फिर से नंबर याद दिला देती हूँ 3311 1063 पर मैसेज करो और बताओ कि कहाँ से सुन रहे हो क्या कर रहे हो और एक गुड मॉर्निंग भेज ही दो
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Year

0: Tanisha.
1: Iconic Himesh Reshamiya. Oh my God, that was the era. Like, he was ruling everywhere. Koi movie, koi album, anywhere, everywhere, only Himesh. Aur wo unki iconic, you know, cap, aur uske saath mein wo mic pakadne ka style, aur unki nasal awaaz. Bhai, crazy kar rakha tha sabko. But still, people were trolling. Kuch na kuch to nikalna hota hai na, ignore karne ka, jaise Himesh bhai ne ignore kiya. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par. And we've got a message over here. So, मुझे किसी का गुड मॉर्निंग आया है. नाम नहीं लिखा है सर जी आपने उनके, लाइक जो नाम मुझे व्हाट्सएप पे नज़र आ रहा है, इट्स ओनली रिटन अल्लाह. ब्यूटिफुल, बट अपना नाम भी बताइए प्लीज़. और साथ में इमरान का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग अर्ली बर्ड आरजे तनीषा. आई एम इमरान. बिहाइंड एवरी सॉन्ग इज़ योर वंडरफुल स्पिरिट मेकिंग इट बेटर. थैंक यू फॉर ऑलवेज शोइंग अप विद अ स्माइल एंड मेकिंग द वर्ल्ड फील अ लिटिल स्मॉलर. नो, little better, I think you mean, and kinder. Thank you so much though. I loved your message. Thank you. And early bird to yaar aap hi ke liye. Ye sab aap ke liye ho raha hai yaar. Atul ji ka bhi aa gaya hai message yahan pe. Dekho, chai ke saath mein badhiya sa nashta bheja unhone. Yaar, this is not fair, Atul ji. Main yahan baithi hu, maine abhi kuch khaya bhi nahi hai. Ab mera chai peene ka man kar gaya hai. Yeah, yeah, chai in hand, eyes on the peak, time to turn today's efforts into tomorrow's triumph. Good morning. Amazing, that should be the spirit. Aur weekend pe to ye spirit rehni hi chahiye, zaruri hoti hai. Ab Raj ji ka bhi good morning aa gaya hai hame khoobsurat se picture ke saath. And sab mein aaj ek special din hai. क्या स्पेशल दिन है? एक ऐसी आवाज़ के मालिक का बर्थडे है आज, जो कि हमें इतने सारे इमोशंस फील करवा सकते हैं. यू नो, लाइक आप कोई डांस नंबर गवा दो उनसे, आप उनसे कोई इमोशनल गाना गवा दो, वो सब में एक्सेल कर जाते हैं. और जो एग्जैक्ट इमोशंस उस गाने के थ्रू हमें फील होने चाहिए, वो होते हैं. जी हाँ, और ये सब गाने आज आप पूरा दिन सुनने वाले हैं, बिकॉज इट इज सोनू निगम्स बर्थडे. दैट मैन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब जितनी खूबसूरत और प्यारी उनकी आवाज़ है, यू नो, जितना अपनापन हमें उनकी आवाज़ में फील होता है ना, उतने ही डाउन टू अर्थ और हम्बल इंसान भी है वो. लाइक आई हैव होस्टेड अ शो फॉर हिम, एंड ऑब्वियसली बैक स्टेज पे ऐसे मुलाकात हुई, थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन हुई. भाई, कोई स्टार वाला वो एटीट्यूड नहीं है. ही इज सो स्वीट एंड सो डाउन टू अर्थ. ऐसे बात करेंगे आपसे जैसे आपको बरसों से जानते हैं. एंड दिस इज द सेम थिंग आई वुड से अबाउट शान. दोनों सेम है, दोनों की आवाज़ें बहुत खूबसूरत है. बट टुडे इज अबाउट सोनू निगम. एंड अभी जो मैं गाना चलाने वाली हूँ, बहुत सारे इमोशंस फील होंगे. आप डिसाइड कर लो आपको किसको प्रायोरिटाइज करना है. ठीक है, सोनू निगम बर्थडे स्पेशल कमिंग अप फॉर यू फ्रॉम द मूवी कल हो ना हो, टाइटल ट्रैक. स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास मेरी जान. जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम.
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें.
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. तनीषा है आपके साथ. बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड कुछ देर पहले जब कल होना होगा टाइटल ट्रैक चलाया था, तो अतुल जी ने जो हमें अपने व्यू की फोटो भेजी थी ना कि वो खूबसूरत वादियों में देख रहे हैं, साथ में चाय और नाश्ता लेके बैठे हैं, उसके साथ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग का मैसेज आ गया. और क्या परफेक्ट बैठ रहा होगा उस यू नो ब्यूटीफुल से व्यू के साथ बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और ये गाना सुन रहे हैं. ओहो हो, बस ऐसे कुछ थॉट्स में खो नहीं जाना, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है. एंड देन मुझे समी जी का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग तनीषा लिखना चाहते थे, कुछ और लिख दिया, कोई बात नहीं. हाउ आर यू लवली आज, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं ये बताइए मुझे. और शबी जी का भी मैसेज आया, उन्होंने मुझे चाय की फोटो भेजी है. ऐसे कैसे कर सकते हो यार आप लोग. और वो मुझे पूछ रहे हैं आप चाय वाली हो या फिर यू आर फ्रॉम द कॉफी साइड. नेवर, ऑलवेज चाय, चाय सुप्रीमेसी. मतलब ऑफिस में ना सब ऐसे शौक हो गए थे व्हेन आई फर्स्ट केम हियर रेडियो ऑलिव में, और तब मैंने मॉर्निंग शो से ही स्टार्ट किया था. सो मैं सुबह 4 बजे उठ के अपना यू नो लाइक सारा काम, शावर वावर, एवरीथिंग रेडी होना पहले कर लेती थी. देन आई वुड गो इन टू द किचन, आई विल मेक माई टी, मुझे आराम से बैठ के मेरी चाय पीनी है, उसके बाद ही मेरा दिन शुरू हो पाएगा. सो इसके लिए मैं 4 बजे उठती थी. एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि भाई ये लड़की चाय के लिए कितनी पागल है. हाँ मैं हूँ. मुझे आप इस तपती गर्मी में भी मुझे दिन में चाय मिल रही है तो आई विल हैव इट. मुझे आधी रात को उठा के बोल के चाय पीनी है तनीषा, आई विल हैव इट. इतनी क्रेजी हूँ मैम. वेल, चाय का प्यार तो फॉरएवर वाला है. एक और प्यार है हमारी लाइफ में जो फॉरएवर वाला है. एंड ये जो रिश्ता है खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन इस रिश्ते में इतनी मासूमियत और इतनी प्योरिटी होती है, क्योंकि आई थिंक आफ्टर आवर फैमिली दीज पीपल आर इन आवर लाइफ्स, जो कि हम जैसे हैं ना हमें वैसे ही प्यार करते हैं, कभी हमें बदलने की कोशिश नहीं करते. उन्हें सब पता होता है कि क्या बुरी आदतें हैं इसकी और किस फालतू चीज़ से इरिटेट हो जाती है और कैसी नॉनसेंस हरकतें कर रही है अनॉय करने के लिए. एवरीथिंग दे नो अबाउट अस, ईच एंड एवरीथिंग. पर फिर भी वो कभी हमें बदलने की कोशिश नहीं करते. हम जैसे हैं हमें वैसे ही अपनाते हैं, वैसे ही प्यार करते हैं. और बस एक बार बोलने की ज़रूरत होती है कि ब्रो आई नीड यू यार, वो आपके साथ खड़े होते हैं यार. Yes, I'm talking about friends we make in our life, जो हमारी extended family बन जाते हैं. और I feel कि हमारी life के हर phase में एक ऐसा friend हमें मिलता है जो कि आपके thick and thin में हर जगह आपके साथ होता है ना. और जो पूरा हक समझता है, like from my childhood I have a friend, वो मेरे घर के सामने रहती थी. तो अभी मेरा ऐसा रिश्ता है उसके साथ और उसकी family के साथ कि it's like my home. हर मदर विल आस्क मी टू डू थिंग्स रादर देन हर ओन डॉटर. उसके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये मुझे पता है. जी हाँ, उसकी शादी की पूरी तैयारियाँ मैंने करी थी. सो इट वॉज लाइक दैट, मोर लाइक अ सिस्टरली बॉन्ड. देन मुझे स्कूल में एक फ्रेंड थी, सेम उसके साथ भी यही सीन था, एक अलग रेपो था. एंड देन देर वॉज कॉलेज में फ्रेंड्स मिले, उसके बाद जब मास्टर्स करने गए वहाँ फ्रेंड्स मिले. देन यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू वर्क, राइट, वहाँ पर आपको दोस्त मिलते हैं. और वो सब अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ में प्ले करते हैं, राइट. कुछ लोग हमें कुछ वक्त के लिए ही मिलते हैं, पर वो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपनापन देकर जाते हैं. एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस रिलेशनशिप वी हैव इन आवर लाइफ विच इज़ फ्रेंडशिप. बिकॉज इससे ज़्यादा प्योर क्या हो सकता है भाई. कोई गिव एंड टेक नहीं है, कोई मतलब नहीं है. They just love you for what you are. And that is the purest and the most beautiful form of love. What do you say? Baki, it is a sign for you. Kyunki hum apni life ki, you know, jaddo-jahd mein itne zyada mashroof ho jate hain ki hume waqt nahi milta ki hum time-time par apne doston se baat kar sake. Kabhi-kabhi to ye hota hai ki birthday to birthday baat ho rahi hai. You know, koi special occasion hai, usi pe baat ho rahi hai. New year to new year or any festival is there. वो नहीं करना है. कुछ दोस्त होते हैं लकीली लो मेंटेनेंस जिन्हें हर रोज़ बात करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल यू नो टाइम टू टाइम उन्हें ये फील करा दिया जाए विदाउट एनी ओकेजन कि भाई तू अभी भी उतना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए यार, अभी भी तेरी उतनी ही याद आती है, उतनी ही ज़रूरत है. दैट मीन्स अ लॉट. सो दिस इज़ योर साइन. अगर नहीं बात की है तो कॉल करो अपने उस दोस्त को और उन्हें बताओ कि वो आपके लिए कितना मैटर करते हैं. और मैं भी मौका लेना चाहूँगी आपको ये रिमाइंड कराने का कि आप भी मैटर करते हैं. हमारी भी तो दोस्ती का ही रिश्ता है. मैं जैसी हूँ आपने मुझे अपना लिया है ना, बस फिर इससे ज़्यादा मैं क्या ही मांग सकती हूँ. और इसी बात पर अगला गाना आपके और मेरी दोस्ती के लिए मेरी जान.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: आसमानी हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Arijit Singh ki awaaz mein Rabta movie se ek wariya. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha sharp ke saath bindaas morning chal raha hai yahan par. Idris ji ka message aaya, good morning my sweet sister, have a nice day. You too Idris ji, I hope you have an amazing day. Aur weekend bhi bahut kamaal ho aapka. Aur ye dosti wale gaane ke liye bhi Atul ji keh rahe hai, you made my morning. Are are, thank you so much. Yahi koshish rehti hai yaar ki ye badhiya gaano se aapke din ki shuruaat badhiya ho aur phir pura din amazing jaye.
1: Radio Olive presents Blackboard Stories.
0: Blackboard Stories का मेरा आज का सवाल है कि which country is home to the world's happiest capital city? Which country is home to the world's happiest capital city? कौन सी country में दुनिया की happiest capital city है ये आपने मुझे बताना है 3311063 पर. सिटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कैपिटल सिटी की, कंट्री नहीं बताना है. कंट्री हम सबको पता है कि कौन सी हैप्पीएस्ट कंट्री है, लेकिन कौन सी कंट्री में हैप्पीएस्ट कैपिटल सिटी है ये आपने मुझे बताना है. यू कैन ऑल्सो कॉल बाय द वे 4444106 पर और व्हाट्सएप 3311106 एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे. लूनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापस आ गया है. रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं. स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं. सिर्फ लूनो हाइपरमार्केट में.
3: लूनो, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
4: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Geo Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वेलविलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेलविलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वेलविलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वेलविलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: हिमेश रेशमिया की एल्बम आपका सुरूर से नाम है तेरा ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. The answer is still unknown, meri jaan. So right now the weather is 36 degrees and it feels like 46 degrees. बहुत क्रेजी ह्यूमिडिटी है. इट्स मोस्टली सनी. और ये कल बारिश की संभावना जताई गई थी. कहाँ हुई है बारिश? किसी के भी एरिया में हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है कि कुछ थोड़ा सा भी ऐसे बारिश का माहौल भी नहीं बना. I did not see that at all. तो अगर आपके एरिया में हुई थी तो do let me know. 3311063 is the number. मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि भाई यहाँ हुई थी बारिश, हमें पता है. Along with that, कोरियन टेस्ट हो रहा है पहली बार कतर में. जी हाँ, कोरियन लिटरेसी टेस्ट होने वाला है. सो इफ़ यू आर और यू नो लाइक किड्स राइट नाउ आर वेरी मच इन टू कोरियन लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द के ड्रामा, के पॉप एंड एवरी थिंग. सो दिस टेस्ट इज कॉल्ड टॉपिक, which is proficiency in Korean test. तो अगर आप interested हैं उसमें और like your kids are interested, do let them know. They can register themselves 10th August तक. Already registrations open हैं. और जो exam है वो 17th October को होने वाली है हमद बिन खलीफा University में. They can earn a globally recognized Korean language certificate और अपनी skills locally भी show कर सकते हैं. जी हाँ, so check out कीजिएगा उसको, register कर लेना if you are interested. And right now जो मैं गाना भेज रही हूँ उसमें तो सभी इंटरेस्टेड होंगे. सोनू निगम, जी हाँ, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका यू नो काफी नॉस्टैल्जिया फील देने वाला गाना भेज रही हूँ मैं दीवाना एल्बम से. स्टे ट्यून्ड. एंड्रयू बिंदास, जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम.
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें.
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे.

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: दास मॉर्निंग, दास मॉर्निंग आज तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा दास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM बिंदास रेडियो ओलिव पे स्टोरी ऑफ द डे
1: जितना अधूरा है जय के बिना वीरू फरहान राजू के बिना रैंचो सर्किट के बिना मुन्ना और प्रीतम के बिना पेंड्रो उतने ही अधूरे हैं आप अपने उस दोस्त के बिना जिसने कभी फसाया है तो कभी पापा की मार से बचाया है हमारी प्रॉब्लम और वॉलेट को हमेशा अपना समझा है हमारे दिल पर और फोटो गैलरी पर जिसका कब्जा है इस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पर अपने उसी स्पेशल यार को रेडियो ऑलिव के साथ मिलकर बोलो हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे
0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
0: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
3: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
4: Radio Olive, I'm in number one.
3: You are listening to me on Radio Olive.
4: Radio Olive,
3: Gio Bindas.
4: Radio Olive, I'm in number one.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Malabar Gold and Diamonds, Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
7: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: दिलेर मेहंदी साहब भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कतर नेशनल लाइब्रेरी की. दे आर होस्टिंग अ सीरीज ऑफ फ्री वर्कशॉप्स एंड समर कैंप एक्टिविटीज थ्रू आउट ऑगस्ट. जी हाँ, और ये चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स दोनों के लिए है. बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग सेशंस होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टेम वर्कशॉप्स, एस्ट्रोनॉमी सेशंस, जीनोमिक्स एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज एंड अलॉट मोर. और कुछ स्पेशल सेशंस होंगे जो कि पार्ट होंगे कतर कनाडा मेक्सिको ईयर ऑफ कल्चर 2026 के प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड कल्चरल एक्सचेंज. साथ में अरबिक इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये जो वर्कशॉप्स हैं ये कंडक्ट की जाएंगी. सो वट एवर इज फीजिबल फॉर यू, यू नो पार्टिसिपेशन इज एब्सोल्युटली फ्री बट एडवांस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है. तो कतर नेशनल लाइब्रेरी का जो इवेंट्स पेज है वहाँ जाकर चेकआउट करो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कब क्या होने वाला है सब कुछ पता चल जाएगा, उस अकॉर्डिंग अपना ऑगस्ट प्लान कर लो. फिलहाल सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर दिलेर मेहंदी की आवाज में, साढ़े दिल ते छुरियां चलाइया. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर. आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. Awesome.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट।

0: मिनट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
0: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिजू का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिजू ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिजू।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: अरमान मूवी से चित्रा की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक, इतनी क्यूट सी वार्निंग, अगर कोई देगा तो आप मना कर पाओगे? बताओ
2: और ट्रेंड में क्या है, क्या है? What's trending?
1: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर, और ट्रेंड में इस वक्त सीरियल्स हैं जो ब्रेकफास्ट फूड होता है जी. सो पीपल आर बीइंग सो क्रिएटिव विद फूड राइट नाउ, यू नो, क्योंकि कभी कभी मोनोटोनस लगने लगता है कि भाई सेम ही चीज़ खाए जा रहे हैं. देन देर आर सम, यू नो, फिटनेस फ्रीक्स और आई वुड से एंथूजियास्ट और लाइक दे लव इट कि वो सेम डे, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो कि यू नो ऐसे जिम के पीछे पागल हैं, एक दिन मिस नहीं होना चाहिए जिम का और खाना एकदम हेल्दी वाला ही खाना है, लाइक वो एक्सट्रीम हेल्दी वाली साइड पर है वो. तो वो कुछ सालों से, आई एम टेलिंग यू ईयर्स, ओके, कुछ सालों से वो सेम खाना खा रहे हैं. ब्रेकफास्ट में सेम चीज़ें होंगी, लंच में सेम होगा, डिनर में सेम होगा. मैं सोच के घबरा जाती हूँ, बट देन व्हेन आई सी देयर फिटनेस आई एम लाइक यार वर्थ इट है यार, पर हिम्मत नहीं हो रही है. सो आई एम कमिंग बैक टू द सीरियल्स. अभी नए टाइप की ब्रेकफास्ट सीरियल आई है, दैट इज मिनी क्वासों सीरियल. यस, क्वासोंस हैं छोटे छोटे से एंड दे विल बी योर सीरियल्स इंस्टेड ऑफ दोज यू नो कॉर्नफ्लेक्स और म्यूसली एंड ऑल. एंड आई डोंट नो इफ इट इज हेल्दी और नॉट, बिकॉज इट इज सपोज, सीरियल इज सपोज टू बी हेल्दी राइट, बट आई डाउट बिकॉज इट्स क्वासो एट द एंड ऑफ द डे. बट आई वुड स्टिल लव टू ट्राई दैट बिकॉज आई लव इट. और फिलहाल मेरा नया नया प्यार ऐसे जगह है म्यूसली के लिए, तो अभी मेरा मोस्टली एवरी ऑल्टरनेटिव डे वाला ब्रेकफास्ट वही हो रहा है. तो ऐसे कुछ कुछ हर थोड़े दिन में आता है कि अच्छा हाँ दिस इज़ गुड, नाउ आई एम एंजॉइंग दिस, सो फॉर अ फ्यू डेज आई एम गोना ईट दैट ओनली. क्या आपके साथ भी सेम चीज़ होती है? मैं ये जानना चाहती हूँ, सेम चीज़ होती है, आई वॉज आस्किंग, सेम चीज़ होती है? 3311106 पर मैसेज कीजिए, बताइए. फिलहाल सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में बर्थडे स्पेशल सॉन्ग मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी. हाय हाय, सुंदर गाना, स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास.
3: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम,
4: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें.
3: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे.

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
4: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Delisha.
1: You're listening to Radio Ola 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal rahe hai yahan par. And you remember jo purani phones hote the, Nokia and all, and they all used, even Samsung, like all the phones used to have removable batteries. Yeah, aur jab bhi phone gire, battery bahar. मेरे साथ तो यही होता था. एंड मुझे फिर मम्मी से डांट पड़ती थी, तुमसे संभाला नहीं जाता है, तुम्हें फ़ोन दिला दिया है, लायक नहीं हो तुम एंड ऑल. एंड देन केम दिस फोन्स जिसमें बैटरी हम नहीं निकाल सकते, इट्स नॉट रिमूवेबल. तो थोड़ी सी राहत की सांस तो मिली है, लेकिन फ़ोन तो अभी भी गिरता है दोस्त. ऐसे ही रैंडमली चलते चलते हाथ से फिसल के गिर जाता है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, बट इट हैपेंस. सो जो यूरोप में 18th फरवरी 2027 से अब एक नया बैटरी रेगुलेशन आया है, जिसमें ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी यूरोपियन यूनियन में सोल्ड हो रहे हैं उसमें रिमूवेबल एंड रिप्लेसेबल बैटरी होनी चाहिए बाय द एंड यूजर. मतलब कस्टमर्स, लाइक आई हैव बॉट अ फोन, सो मैं उसको जो बैटरी है उसको रिमूव करके रिप्लेस कर सकूं. इट शुड बी लाइक दैट. राइट नाउ द फोन्स वी हैव, वी कैन नॉट डू दैट. राइट, वी हैव टू गो टू द स्टोर्स एंड गिव देम टू डू वट एवर इज रिक्वायर्ड विद द बैटरी और फोन में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए. सो नाउ दिस रेगुलेशन हैज कम. और ऐसा नहीं है कि वो स्नैप ऑफ वाले बैक कवर्स होंगे एंड यू कैन जस्ट रिमूव द बैटरी. टूल्स आने चाहिए फ़ोन्स के साथ जिसके थ्रू वो बैटरी निकाल के खुद रिप्लेस कर सकें, उन्हें कहीं भी जाने की, सर्विस सेंटर वगैरह पर जाने की ज़रूरत ना हो. और बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो चुकी है इस वक्त, मतलब क्रेजी तरीके से. तो उसके ऊपर भी काम करने के लिए कहा गया है. ये फ़िलहाल सिर्फ यूरोप में ही आया है और कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा है. बट व्हाट डू यू थिंक, वुड यू वॉन्ट दिस टू बी एक्सेप्टेड ग्लोबली क्या, या फिर यू वॉन्ट द रिप्लेसेबल बैटरीज अगेन? क्या आपका ओपिनियन अबाउट दिस? आई वुड वॉन्ट टू नो. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए. फिलहाल मैं रही हूँ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान. रेडियो

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे. लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है क्योंकि हाफ पे बैक वापस आ गया है. रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं. स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं. सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में.
2: लुलु, where the world comes to shop.
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

Madhuvanti Bagchi or Jasmine Sanlis ki awaaz mein shararat from the movie Durandar only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par aur imagine karo, farz karo ki aapki car ke paas WhatsApp hai aur wo aapko message kar rahi hai. Kya message karegi wo is waqt? Hi bro, I'm running on hope and old engine oil. Please badal de yaar. और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कार आपको ये मैसेज करेगी तो ध्यान से सुनो मेरी बात. आपकी कार आपको ब्लॉक कर दे उससे पहले पहुंच जाओ वैल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस ऑन सलवार रोड. जी, बिकॉज योर कार डिजर्व्स दैट प्रीमियम केयर एंड लव, यू नो. और वहां पर आपको मिलेंगे जेन्युइन वैल्वोलिन प्रोडक्ट्स, प्रीमियम फिल्टर्स और स्मार्ट डिजिटल कार पासपोर्ट, सो दैट आपकी कार की जितनी भी सर्विस हिस्ट्री है वो आपकी फिंगर टिप्स पे हो. तो अब ये नंबर ध्यान से सुनो और नोट कर लो. निकाल लिया नोट पैड या फिर फोन में कर लो नोट? निकाल लिया, ठीक है. 7765595 4 7765 5954. और अगर अभी भी नहीं कर पाए हैं तो यहाँ मेरा नंबर तो आपके पास है ही, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको नंबर भेजती हूँ 3311063 पर. एंड इफ यू गो टू वैल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस और वहाँ जाकर आप अपना ऑयल चेंज करवाते हैं तो आपको उनकी तरफ से एक मिलेगा गिफ्ट. यस, तो फटाफट से जाइए मौके पे चौका मार लीजिए. फिलहाल सुनिए कमाल का गाना ऑन रेडियो. बिंदास मेरी जान.

0: Life Short Break.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।
4: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
5: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
6: हाय, आई एम राजकुमार राव।
7: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
8: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: एनीथिंग यू नो, डबल टैप हो जाता है और लाइक चला जाता है. बस वहां जो धक धक शुरू होती है ना कि यार इसको कैसे हटाऊं, आप उसे अनलाइक कर देते हो ये सोच के कि नोटिफिकेशन चली जाएगी. तो एडम मोसेरी ने ये ऐसे क्लियर कर दिया है कि देखो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन तो चली जाएगी, जब वो इंसान इंस्टाग्राम खोलेगा तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि आपने लाइक करके अनलाइक किया, क्योंकि वो नोटिफिकेशन वहां से डिलीट हो जाती है. लेकिन जो आपके फोन की नोटिफिकेशन है उसमें मेटा कुछ नहीं कर सकता, तो वो वहां रहेगी, नोटिफिकेशन में दिख जाएगा फोन की इंसान को कि भाई इसने मेरी फोटो लाइक करी है. और जब वो इंस्टाग्राम पे जाएगा और वहां नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो पता चल जाएगा कि इसने अनलाइक भी कर दी है. सो या देयर इज दिस. सो प्लीज ख्याल रखें, ऐसे किसी के बहुत पुराने पोस्ट पे पहुंच जाएं तो डबल टैप करने से जरा बचें, जूम वूम करने से बचें, क्योंकि उसी में ज्यादातर डबल टैप हो जाता है जी. सेंडिंग सरगम स्पेशल, यू आर माय सोनिया फ्रॉम द मूवी K3G. स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास. जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम,
1: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें.
0: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas Radio Olive pe Radio Olive pe Story of the day
1: Story of the day
2: जितना अधूरा है जय के बिना वीरू, फरहान राजू के बिना रैंचो, सर्किट के बिना मुन्ना और प्रीतम के बिना पेड्रो, उतने ही अधूरे हैं आप अपने उस दोस्त के बिना जिसने कभी फसाया है तो कभी पापा की मार से बचाया है, हमारी प्रॉब्लम और वॉलेट को हमेशा अपना समझा है, हमारे दिल पर और फोटो गैलरी पर जिसका कब्जा है इस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पर अपने उसी स्पेशल यार को रेडियो ऑलिव के साथ मिलकर बोलो Happy International Friendships Day.

0: भाई ये थी वीकेंड वाली एनर्जी है ना. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ. बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पे सुनिधि चौहान और शान की आवाज में. कृष्णा कॉटेज से बिंदास सुना आपने. और कल जो पूरा दिन ऐसे टेक ओवर ही हो गया था बेसिकली जीसीसी के इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का, बच्चों की पीओवी सेल्फीज के साथ. ओ माय गॉड, ऑल द ब्रांड्स वर पोस्टिंग. सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्यों, कौन सा कैंपेन है, किसने स्टार्ट किया है. किसी को भी रूट नहीं पता था. अब पता चल गया है, इट वॉज नॉट रियली अ कैंपेन बाय द वे, वो एक एक्सीडेंट था. जी हाँ. So there was this Saudi brand Sahaba Abaya, okay, and unki jo owner hai, phone khula reh gaya, unlock reh gaya, aur bacche ne le liya aur leke selfie leke post kar di Instagram pe. Ji haan. Uske baad instead of deleting that selfie, unhone kaha chalo jaane do, kyunki likes aa gaye hain, interaction ho raha hai, comments aa rahe hain, people are talking about the selfie in the comment, so they were like okay, let it be. एंड देन उसके बाद सारे ब्रांड्स ने फॉलो करना शुरू कर दिया फॉर नो रीजन एट ऑल. जी हाँ, बस एक साथ लग गए हैं. सो आई लव दिस काइंड ऑफ यूनिटी, दैट वॉज ब्यूटिफुल. और इतनी क्यूट क्यूट पिक्चर्स आ रही थी. वी ऑल्सो पोस्टेड वन, इफ यू हैवंट चेक इट आउट, जाइए radioolive.qa पर और चेकआउट कीजिए और फॉलो कीजिए हमें अगर अभी तक नहीं किया है तो. ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास मेरी जान.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.
2: Zabarist hit.

हर्ष की आवाज में सादी सुनो लियोन रेडियो 106.3 FM दनीजा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और मेरी बात सुन लो, वीकेंड आ गया है, हमने इंतजार किया है पिछले सैटरडे से इसका, ठीक है? तो अभी फुल ऑन एंजॉय करना है, ये जो काम वाम का स्ट्रेस है ना, आज काम पर ही छोड़कर जाना, घर मत लेकर जाना, जब वापस आओगे संडे को काम पे तो तब ले लेना यार, कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, कुछ भी नहीं होगा, कोई अर्जेंसी नहीं है, चिल मारने का एकदम, अपने लिए टाइम निकालो, वट एवर यू हैव डिसाइडेड यू वांट टू डू इन द वीकेंड अपार्ट फ्रॉम वर्क वो करें प्लीज, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वंस के साथ वक्त बिताएं और अपने साथ वक्त जरूर बिताएं मेरी जान, बहुत जरूरी होता है यार, और मस्त एंजॉय करने का है। 3311 1063 इज द नंबर, कोई भी बात हो बिंदास आके हमसे आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इफ यू हैवंट फॉलोड अस ऑन सोशल मीडिया वहां जाकर फॉलो कर लो radioolive.qa, वहां पर भी मैसेज कर सकते हो, याद आ जाए बहुत सारी की, अरे यार मिस कर रहा हूँ मैं तो, मिस कर रही हूँ मैं तो, बिंदास आ जाने का, मैसेज कर देने का, ठीक है? वी आर देयर फॉर यू, हाँ जी, और अपना ख्याल रखो एंड हैव एन अमेजिंग वीकेंड टू योर सेल्फ, मिलते हैं संडे सुबह 6 बजे, स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास मेरी जान।

0: ஓ பாட்டு தான் தூடா
1: மேரே சோட்டே ஆட்ரிக்ஸ் ஆயங்கே
2: ஆயங்கே நஹி ஆ கே
3: ஓலிவ் ஷார்ட் பிரேக் सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
3: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
5: This hour is brought to you by
6: Homes R Us. We complete your home.

जाने कितने दिनों के बाद जो है वीकेंड आया है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है ना। मतलब कब से इंतजार कर रहे थे, ये वीकेंड आ ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली हमारे दरवाजे पे दस्तक दे दिए थर्सडे ने। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसर एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम बातचीत जो है अपनी जारी रख रहे हैं। अब देखो यार, वीकेंड आता है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। मतलब पूरे दिन, मतलब मुझ में एक एनर्जी का जो है ऐसे दौरान मेरी बॉडी में जो है वो चालू रहता है। मैं बहुत ज़्यादा एकदम एनर्जी में रहती हूँ कि आज तो सारा काम कर दूंगी, कल के लिए कोई छोड़ूंगी ही नहीं, कल सिर्फ सोना है मुझे। लेकिन पता नहीं कहाँ से कल कोई काम आ जाएगा एंड फिर मेरा जो है आराम जो है वो रह जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, आज मैनिफेस्ट ये करेंगे कि कल जो है दिन बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत अच्छे से रेस्ट करूंगी, बहुत अच्छा खाना खाऊंगी एंड स्पाइडरमैन देख कर आऊंगी। आप बताइए कि आपने अपने वीकेंड का क्या प्लान बनाया है एंड आज का दिन जो है आपका, आपने कैसा सोचा हुआ है कि किस तरीके से जो है आप बिताने वाले हो। 3311063 पर अगर आप मुझसे जो है बातचीत कर सकते हैं एंड रिचुअल के हिसाब से कॉकटेल 2 का गाना जो है वो मैं आपको थोड़ी सी देर में सुनाने वाली हूँ। सो ये गाना जो है आप इंजॉय करके वापस आइए, फिर जरा मैं आपको बताऊंगी कि मौसम कैसा रहने वाला है, ताकि आप अपना वीकेंड जो है उस हिसाब से प्लान करें, आउटिंग वाउटिंग जो है वो देख लें कि जाना है बाहर नहीं जाना है, और जाना है तो सनस्क्रीन कितनी लगानी है, कपड़े कौन से पहनने हैं। फिलहाल जो है एक अमेजिंग वाला गाना इंजॉय करके आइए जरा वापस, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए आपकी कसूस के साथ जियो बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:14, दैट इज 10:14. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पे. रेडियो ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे.
3: स्टोरी ऑफ द डे.
4: जितना अधूरा है जय के बिना वीरू, फरहान राजू के बिना रैंचो, सर्किट के बिना मुन्ना और प्रीतम के बिना पेड्रो, उतने ही अधूरे हैं आप अपने उस दोस्त के बिना जिसने कभी फसाया है तो कभी पापा की मार से बचाया है, हमारी प्रॉब्लम और वॉलेट को हमेशा अपना समझा है, हमारे दिल पर और फोटो गैलरी पर जिसका कब्जा है इस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पर अपने उसी स्पेशल यार को रेडियो ऑलिव के साथ मिलकर बोलो हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे.
5: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
6: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
5: योर स्पेशल ऑफर?
6: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
5: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
6: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
5: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
7: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
8: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
7: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: कितने लोग हैं जिन्हें एक विलन रिटर्न का ये गाना याद है? कुछ बहुत यू नो एपिक लोग होते हैं जो बॉलीवुड के बहुत अच्छे फैन होते हैं और जिनको बहुत अच्छे गाने पसंद होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ऐसे गाने जो है वो याद रह जाते हैं। बाकी अगर आपको याद नहीं था तो कोई बात नहीं गाइस, हर रोज जो है नया दिन होता है सीखने के लिए और वीकेंड पे तो ऐसे गाने वानों के बारे में सीख ही सकते हैं। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए देखिए हम काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एंड मैंने जैसे वादा किया था आपसे कि आकर आपको मौसम के क्या हाल चाल है वो बताऊंगी, तो देखो अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार पिछले कुछ दिनों के कंपेरिजन में जो है पिछले 3 दिन से जो है ठीक है मौसम, जो है इतना नहीं हो रही है गर्मी एंड बारिश होगी ये भी कहा जा रहा था, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो नहीं हुई बारिश। आप क्या हुई क्या? वैसे इस वक्त का टेम्परेचर दोहा में 39 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हवाएं जो हैं वो बहुत जोर से तो नहीं चलेंगी, 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो है आपको हवा चलती हुई दिख जाएगी। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपना ख्याल रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इस हीट को जो है बीच करने के लिए एक कूल सॉन्ग तो बनता है, बस इसीलिए वीकेंड वाली वाइब को मेंटेन रखते हुए एक कूल सॉन्ग आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: ये वो जॉनर है गानों का जिसमें हम के को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार करते हैं, मतलब वो गाने जिसमें के ने जो है एक अलग टाइप की मेलेडी गाई है वो तो हमें पसंद है ही, लेकिन ये वाले गाने जिसमें थोड़ा सा फन है, थोड़ा सा डांस है, ये हमें थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा जो है ना ऐसे पसंद है। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए काम काज मैं कर रही हूँ। एंड देखिए यार, इस दुनिया में ना चाय से बेहतर और कुछ नहीं है। मैंने जो है आप लोगों से बातचीत जब मैंने शुरू की थी तो मैंने एक चाय ऑर्डर करी थी और भैया ने अभी मुझे कॉल किया कि मैडम आपकी जो चाय है वो आ चुकी है। अब मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी लेकिन मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी चाय जो है वो ठंडी हो जाए, तो मैं जल्दी जल्दी आपको ये बता देती हूँ कि अगर आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है तो आप ना किसी बहुत ही स्पेशल इंसान के साथ अपना बर्थडे जो है वो शेयर करते हो, वो है हमारे मॉडर्न रफ़ी साहब। हाँ जी, मॉडर्न रफ़ी जी को जो है कहा जाता है किसी को, और वो है सोनू निगम जी को। हाँ जी, सोनू निगम जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है एंड बहुत ही अमेजिंग इनका करियर रहा है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इनको अलग अलग जॉनर्स के लिए जो है अप्रिशिएट करते हैं। 6,000+ सॉन्ग्स जो है वो इन्होंने गाए हुए हैं, 32 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये गा चुके हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी तो गाते ही हैं। तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया वाला काम जो है ये कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इनके बाकी जो है टैलेंट्स की, तो ये जो है मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं एंड पूरे बॉलीवुड में इनकी मिमिक्री के जो है चर्चे हैं, और हॉलीवुड के वॉइस ओवर्स भी इन्होंने किए हैं। अलादीन की आवाज़ जो है वो भी अलादीन में इन्होंने आवाज़ दी हुई है। सो बहुत ही बढ़िया है, चाइल्ड एक्टर की तरह इन्होंने जो है शुरुआत की थी एंड इनका जो एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये जो है एक बेगर बने थे एंड लोगों के पास गाकर जो है पैसे मांग रहे थे एंड ये देख रहे थे कि लोगों को टैलेंट की कितनी वैल्यू है, वो भी काफ़ी वायरल हुआ। तो ऑल एंड ऑल एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग की तरह और एक अमेजिंग आर्टिस्ट की तरह, हमारे फेवरेट आर्टिस्ट की तरह सोनू निगम को जो है हम कहते हैं थैंक यू सो मच हमें इतना अमेजिंग जो है प्लेलिस्ट देने के लिए एंड आपको अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे रेडियो ऑलिव की तरफ से। तो जल्दी से सोनू निगम का अमेजिंग वाला गाना जो है ये इंजॉय करके आइए, मैं जरा चाय पी के आती हूँ। ओके,
1: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम,
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें।
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड win.
2: Today is the day, July 30th, with the opening of Safari Hypermarket's expanded showroom at Isdan Mall, Al Garafa, where you can win an MG3 car through a lucky draw by Visit and Win promotion. Just visit Safari Hypermarket, that's it, and you can win a brand new MG3 car 2026 edition absolutely free. You can also get many products at amazing prices on the occasion of the expanded showroom opening. Don't miss this celebration. Visit Safari Hypermarket. It is Isdan Mall, Al Garafa.
3: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

0: मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क. कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: चला जी का ये गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल एफएम। मैं हूँ आपकी कजिन्स, शो आपके लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। एंड यार मैं ना आप लोगों के लिए ऐसे तरीके ढूंढती रहती हूँ जिससे स्ट्रेस जो है कम होता है, और अब हर रोज़ आपको जो है एक ऐसा तरीका बताना पड़ता है। इस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि आज कौन सा इंटरेस्टिंग तरीका बताऊँ। मैं जो है चूज़ कर रही हूँ कि नहीं नहीं यार ये वाला तो थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, नहीं ये वाला आसान लग रहा है, नहीं ये तो सबको पता है। सो आज जो मैं ढूंढ के लाई हूँ, मुझे खुद हंसी आ रही है कि यार भाई कशिश थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा सा तो ऐसा करो कि यार नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, स्ट्रेस इससे कैसे कम होगा। बट चलिए मैंने अब रिसर्च पढ़ी है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको अब थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो किसी भी चीज़ का, तो आप जो है एक अकेली जगह पर बैठिए एंड वहाँ पर बैठकर अपनी पुरानी जितने भी मेल हैं या अपने फ़ोन की स्टोरेज है वो खाली करनी शुरू कर दीजिए। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपके फ़ोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा एंड दूसरा आपके दिमाग में जो यू नो जंक भरा है, जो आपको ऐसा लग रहा है, जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, वो चीज़ें भी आपकी जो है ऐसे गायब हो जाएंगी। सो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको स्ट्रेस हो तो अपने मेल्स जो है वो जाकर पुराने मेल्स स्पैम मेल्स जो है वो डिलीट करने लग जाना, तो इससे आपका ही बढ़िया हो जाएगा। तो अब ऐसा है कि जब वाईफाई ना मिले तो बैठकर नहीं करना है मेल्स को डिलीट, आप बैठ के फोटोज देख सकते हो। मेल सिर्फ तब डिलीट होंगे, फोटो सब सिर्फ तब डिलीट होगी जब आपको स्ट्रेस होगा। बाकी मैं हूँ आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, चल लंबा फॉर एवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। इस गाने को एंजॉय करो, उसके बाद जरा ऑल द अपडेट्स आपके रेडियो सेट्स पर आएंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: Radio Olive Park.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
1: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: जी तो आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:10. दैट इज 11:10. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: Today is the day, July 30th, with the opening of Safari Hypermarket's expanded showroom at Isdan Mall, Algarafa, where you can win an MG3 car through a lucky draw by Visit and Win promotion. Just visit Safari Hypermarket, that's it, and you can win a brand new MG3 car 2026 edition absolutely free. You can also get many products at amazing prices on the occasion of the expanded showroom opening. Don't miss this celebration. Visit Safari Hypermarket. It is Dan Mall Algarafa.
5: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
6: Hi, I'm Suhali Khan. Radio. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
7: I'm in number one, Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

देखिए बिल्कुल इसी तरह दिन गिन गिन के जो है इंतजार कर रहे थे यू नो मार्वल के फैन स्पाइडर मैन की नई मूवी का। मेरे ऑफिस में जो कुछ लोग हैं वो लोग लिटरली जो है उन लोगों ने एक टाइमर लगा के रखा था जिसमें एक एक दिन एक एक सेकंड एक एक मिनट जो है वो टिक टिक टिक टिक करके जा रहा था कि न्यू मूवी जो है वो कब रिलीज होने वाली है। टीजर, ट्रेलर, गाने, बैकग्राउंड स्कोर, कोई भी न्यूज, कोई भी इंटरव्यू, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा था। और देखिए फाइनली वो दिन आ गया है। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त जो है वो हम बना रहे हैं। अब देखिए लाइफ तो ऑटोमेटिकली तभी मस्त हो गई थी जब हमें ये पता चला था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है वो आने वाली है। एंड आज का के दिन का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे, स्पाइडरमैन देखने बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मेरे साथ तो यही हो रहा है, मैं जिस भी इंसान से पूछ रही हूँ ना कि यार आज का क्या प्लान है, तो वो या तो ये बोल रहे हैं कि यार हमने टिकट बुक कर लिया और हम स्पाइडरमैन देखने जा रहे हैं, या तो वो ये बोल रहे हैं कि यार मैं ना अभी टिकट देख रहा हूँ तो मैं हो सकता है कि आज अगर मुझे टिकट मिल जाए तो मैं चला जाऊँ। और कुछ लोग जो है वो लोग ये है कि हम शाम को बैठ कर जो है अब कब टिकट मिल सकती है वो देखेंगे। और लोगों ने जो है जिन लोगों ने मूवी देख ली उन लोगों ने स्पॉयलर्स जो है वो डालने शुरू कर दिए, तो अब इंस्टाग्राम जो है वो इतना संभल संभल के चलाना पड़ रहा है ना कि कहीं से पता ना चल जाए कि आखिर मूवी में क्या होने वाला है। अब देखो मैं तो वो इंसान हूँ जिसे स्पॉयलर से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कई बार पहले खुद ही सर्च करके स्पॉयलर देख लेती हूँ कि कहीं जो है मेरा जाना बर्बाद ना हो जाए थिएटर तक। तो बस आप बताइए मुझे कि आप स्पाइडरमैन की इस न्यू मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और क्या आप स्पाइडरमैन फैन हैं या नहीं है, या मार्वल के किसी और कैरेक्टर के फैन है, इस पर बातचीत जो है वो हम करेंगे। और इस कूल बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगता है एक कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर तो बनता है। बस एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिएगा। और बाकी आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहना है और कहते रहना है जियो बिंदास 3311063।

0: आपने ये वाली बात रियलाइज की है कि बॉलीवुड को जब भी लगता है कि यार अब ना शादियों का सीजन आने वाला है या बहुत सारी शादियां होने वाली हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बॉलीवुड में किसी भी मूवी में रैंडमली एक गाना जो है वो डाल देते हैं जिसमें शादी हो रही हो या जो शादी से रिलेटेड हो, भले ही वो मूवी के प्लॉट से जो है मैच करती हो या नहीं करती हो। मतलब हमारा जो हीरो है वो जंगल में घूम रहा है, उसके पास खाने पीने को नहीं है, लेकिन बीच में शादी वाला गाना डालना है, इस वजह से उसको जो है आपने दे दिया कि भाई चलो ठीक है अब एक काम करो तुम सोचो कि अपनी शादी के बारे में। किसी मूवी में पूरे के पूरे जो है गाना दिखा देते हैं, हमें लगता है कि ओ शादी हो जाएगी, और फिर पता चलता है कि यार वो तो सपना था। फिलहाल देखिए मूवीज की बात करते हुए एक बहुत ही प्यारी मूवी की बात हम कर रहे थे, स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे जो है वो रिलीज हो रही है आज, एंड बहुत सारे लोग जो है वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पहुंच चुके हैं, एंड धीरे धीरे करके स्पॉइलर्स जो है वो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड मी बीइंग अ वेरी फिजिटी पर्सन मैंने सारे स्पॉइलर्स ऑलरेडी देख लिए, मेरी टिकट भी बुक हो गई है कल की, लेकिन मैंने फिर भी सारे के सारे स्पॉइलर्स भी देख लिए। एंड अब मैं अपने दोस्तों को जिन्होंने भी मेरे साथ थोड़ी भी कभी ऐसी चीज़ की है कि मुझे उनसे तारीफ चाहिए या मैं चाहती हूँ मुझसे माफ़ी मांगे, तो मैं उन्हें बोल रही हूँ कि अगर आपने मेरे बारे में चार अच्छी बातें नहीं बताई मुझे तो मैं आपको स्पॉइलर बता दूंगी, और मैं इस तरीके से बताऊंगी जैसे अभी नहीं बताऊंगी, मैं रैंडमली चार रील के बीच में एक ऐसी रील दे दूंगी आपको, भेज दूंगी आपके लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मूवी में क्या होने वाला है। आई नो आई एम इविल बट क्या किया जा सकता है। फिलहाल देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्पाइडरमैन फैन हैं या स्पाइडरमैन फैन नहीं है, आपने अभी मार्वल की मूवीज देखनी शुरू की है, तो आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं बता दूं ब्रांड न्यू डे मूवी देखने से पहले। सो टॉम हॉलैंड जो है उन्होंने इस मूवी के चलते एक रिकॉर्ड बनाया है, टॉम हॉलैंड पहले ऐसे एक्टर बन गए हैं जिन्होंने चार स्टैंड अलोन स्पाइडरमैन मूवीज में जो है काम किया है, रिकॉर्ड ब्रेकर है मूवी, इसका जो ट्रेलर है उसने पहले 24 घंटों में ही 719 मिलियन व्यूज जो है वो हासिल कर लिए थे। डेडपूल और वॉल्वरीन का रिकॉर्ड जो है वो इस मूवी ने तोड़ दिया था। इस मूवी में एक बिग क्रॉस ओवर जो है वो होने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। एंड न्यू डायरेक्टर है इस मूवी का, एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो होने वाला है। ये फिल्म नो वे होम के 4 साल बाद सेट है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल जो है उसकी वजह से पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है, एंड अब देखना यह है कि पीटर पार्कर सबको याद कैसे दिलाएगा, एमजे को याद कैसे दिलाएगा कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, मतलब मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ, मैं ही हूँ जो जिससे तुम प्यार करती थी, एंड ऑल दैट। सो आप बताइए कि आपका क्या प्लान है, आपने ये मूवी देखने का सोचा है या नहीं सोचा है, या क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस मूवी से। फिलहाल एक्सपेक्टेशन तो आप मुझसे अच्छे गानों की रख सकते हैं, सोनू निगम का हैप्पी वाला बर्थडे है तो उनका एक फेवरेट गाना, मतलब उनका गाया हुआ गाना जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ये उनके सारे गाने जो है जो आप सबको पसंद है उससे थोड़ा डिफरेंट है, काफ़ी कम लोगों का ये फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन उन कम लोगों में मैं तो देखो आती हूँ। सो एंजॉय कीजिए, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम,
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें।
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे।

0: क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

इबेड लोगी आवाज में गाना विदाउट मी आपने एंजॉय किया ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव. मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं मैं लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए देखिए हम बातचीत कर रहे हैं. अब आपकी लाइफ को तो मैं मस्त बना दूंगी, लेकिन एक चीज है जिसको मस्त बनाने के लिए जो है आप ही को काम करना पड़ेगा, और वो है आपकी गाड़ी. तो देखिए हम अपनी गाड़ी को जो है रोज दौड़ाते हैं, पर उसकी केयर करना हमेशा भूल जाते हैं. इसीलिए उसकी केयर करिए एंड अभी के अभी जाइए वाल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस पर जो है सलवा रोड पे. यहाँ पर आपको जो है 150 इयर्स का ग्लोबल ट्रस्ट मिलने वाला है एंड आपको मिलेंगे जेन्युइन वाल्वोलिन प्रोडक्ट्स और प्रीमियम क्वालिटी फिल्टर्स. सबसे कूल चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जिससे आपकी गाड़ी की पूरी जो सर्विस हिस्ट्री है वो हमेशा आपकी फिंगर टिप्स पे रहेंगी. यानी अब जो है मम्मी से वाइफ से इस बात पे झगड़ा नहीं होगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ रख देते हैं. सो जल्दी से जाइए अपनी कार को जो है पैम्पर कीजिए. एक नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके जो है वो बात कर सकते हैं एंड केयर के लिए और इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं. 7765 5954 इज द नंबर, 7765 5954. और बाकी देखिए आपके लिए बहुत अमेजिंग गुडीज भी यहाँ पर मिलेंगे. सो स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

आदि असलम का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग रुस्तम मूवी से आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आलिफ पे। मैं हूँ आपकी कसम, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम लोग और ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। अब देखिए यार, वीकेंड जो है उसने हमारे दरवाजों पे ऐसे दस्तक सी दे दिए, घर पे, ऑफिस में, हमारे यहाँ हर जगह जो ऐसे वीकेंड की वाइब फैली हुई है। अब ऐसा हो गया है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा संडे को, अभी कुछ नहीं होगा काम। आज आप कुछ भी मत बोलिए हमें, हमारा जो पुराना काम है हम बस उसे फटाफट निपटाना चाहते हैं एंड आगे वीकेंड में प्रवेश करना चाहते हैं। अब देखिए इसके चलते जो है फैशन जो है उस पर भी हम काफ़ी वर्क करेंगे। अगर आपके पास कोई काम करने को नहीं है या आपके पास काम है लेकिन आपको वो काम नहीं करना है, तो आपके लिए एक DIY अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आई हूँ। सो जल्दी से आप जाइएगा घर एंड अपनी कोई भी पुरानी टी शर्ट जो है वो बस आपको लानी है, उठानी है एंड उसे जो है काटना शुरू करना है। सबसे पहले आपको उसको नेक से काटना है एंड उसके बाद जो है उस टी शर्ट के नीचे जो हेम होती है उस पर आपको क्रिस क्रॉस कट्स लगाने हैं एंड उसके बाद उन्हें जिस तरीके से एक चोटी बनाई जाती है वैसे जो है आपको चोटी बनानी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कशिश ये क्या बनवा रही हो हमसे, फैशन के सेगमेंट में क्या बातें कर रहे हो। सो इस वक्त सोशल मीडिया पे यही ट्रेंड चल रहा है, अच्छी खासी नई नवेली टी शर्ट्स को जो है लोग काट रहे हैं एंड उससे कुछ नया बना रहे हैं, ये इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। सो आप भी जो है ट्राई कर सकते हैं लेकिन इसके लिए अपनी कोई नए गारमेंट को जो है ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, कोई पुरानी नाइट सूट की जो आपकी शर्ट होगी ओवर साइज वाली आप उससे ये काम करके देख सकते हैं एंड क्योंकि लेयरिंग काफ़ी चल रहा है सो अंदर आपको किसी और ब्राइट कलर की टी शर्ट पहननी है एंड उसके ऊपर आपको दूसरी ये जो काटी हुई आपकी टी शर्ट है इसको लेयर करना है। दिस इज़ इन ट्रेंड एंड जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले स्पाइडरमैन की, सो काफ़ी सारे लोग ये ट्रेंड कर रहे हैं स्पाइडरमैन वाली मूवी देखने जाने के लिए, मतलब ब्लू टी शर्ट के ऊपर रेड टी शर्ट जो है वो लेयर कर रहे हैं, उसके साथ वाइट स्नीकर्स जो है वो लेयर कर रहे हैं। सो ऑल एंड ऑल कुछ इस तरीके से जो है स्पाइडरमैन देखने के लिए लोग जा रहे हैं। बाकी आप बताइए कि आपको ये वाला ट्रेंड ऐसा लगा, आप ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देखिए देसी घरों में मम्मियां तो ऐसा कुछ ना कुछ पुरानी टी शर्ट से बनाती ही रहती है। बाकी एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए और मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास.
2: Time check.
3: Brought to you by
2: Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
4: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:12. दैट इज 12:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
0: रेडियो ऑलिव पे. रेडियो ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे.
5: स्टोरी ऑफ द डे. स्टोरी ऑफ द डे.
4: जितना अधूरा है जय के बिना वीरू, फरहान राजू के बिना रैंचो, सर्किट के बिना मुन्ना और प्रीतम के बिना पेड्रो, उतने ही अधूरे हैं आप अपने उस दोस्त के बिना जिसने कभी फसाया है तो कभी पापा की मार से बचाया है, हमारी प्रॉब्लम और वॉलेट को हमेशा अपना समझा है, हमारे दिल पर और फोटो गैलरी पर जिसका कब्जा है इस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पर अपने उसी स्पेशल यार को रेडियो ऑलिव के साथ मिलकर बोलो हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे.
0: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
6: Today is the day, July 30th, with the opening of Safari Hypermarket's expanded showroom at Isdan Mall, Al Gharafa, where you can win an MG3 car through a lucky draw by Visit and Win promotion. Just visit Safari Hypermarket, that's it, and you can win a brand new MG3 car 2026 edition absolutely free. You can also get many products at amazing prices on the occasion of the expanded showroom opening. Don't miss this celebration. Visit Safari Hypermarket. It is Dan Mall Al Gharafa.
7: Safari, world class shopping experience. Doha, Qatar.
8: ਸਸਿਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ.
9: ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ,
8: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ.
0: ਆਲਿਫ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ.

0: आए हाय, कितना सोलफुल गाना था ना. मतलब यार देखिए, एक तो इस बात की ठंडक दिल को मिली हुई है कि आज वीकेंड है, और दूसरा ऐसे गाने, ओफो. कभी कभी तो लगता है कि खुद की ही नजर उतार लूं. वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिवर. मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं. लाइफ मस्त है. एंड देखिए, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे है आज. आप जैसे सुन ही रहे स्टोरी ऑफ द डे में, आप कि आपके ना अलग अलग टाइप के दोस्त होते हैं. कुछ दोस्त वो होते हैं जो आपको जो है हमेशा डांट खिलवाते रहते हैं, कुछ वो होते हैं जो हमेशा सारा ब्लेम जो है वो खुद पर ले लेते हैं. कभी आपको सरकास्म में जो है कुछ पते की बात जो है वो सिखा देते हैं, ताने मार के जो है बात सिखा देते हैं, और कभी आपको रोते हुए देख के बोलते हैं चल चल कोई बात नहीं, उठ उठ उठ उठ उठ उठ, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता. सो यार, ऐसे ही दोस्तों को याद करते हुए आज जो है अमेजिंग वाले गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन लेकिन लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने दोस्त का नाम जो है वो मुझे मैसेज करना चाहिए, ताकि हम उन्हें इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे जो है वो विश कर सके. तो जल्दी से अपना फोन उठाओ, 3311063 पर मुझे मैसेज कर दो कि यार आपके वो अजीज दोस्त कौन से हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाए एंड कभी भूल नहीं सकते हैं, जिनके साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं आपके पास. फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ

0: जाने तो हुए जाने ना मूवी से ये अमेजिंग वाला ट्रैक वीकेंड की वाइब देते हुए आ गया है आपके रेडियो सेट पर। और मैं भी आ गई हूँ अपना शो लाइफ मस्त है लेकर आपको एंटरटेन करने के लिए और आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए। मैं हूँ आपकी कशिश। एंड देखिए यार, आपका वीकेंड जो है वो हो सकता है कि अभी कुछ घंटों बाद जो है वो शुरू हो जाए। सो आपको अगर स्ट्रेस हो कि यार क्या किया जाए वीकेंड पे, स्पाइडरमैन की तो टिकट नहीं मिल पाई है तो क्या देखें, सो एक ऐसी मूवी है जो आप देख सकते हो। मूवी का नाम जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, मूवी का नाम है गुलमोहर। अब इसमें क्या है, ये कहानी एक घर की है जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स जो है वो घर शिफ्ट करते हैं, लेकिन सबसे मेजर बात यह है कि ये घर सिर्फ एक घर नहीं, सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, बल्कि उनकी फैमिली का एक पार्ट है। एंड इस मूवी में आपको भी अटैचमेंट हो जाएगा उस घर से। तो जाइए जल्दी से सर्च कीजिए मूवी गुलमोहर, आप देखिए। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले अपनी गाड़ी को एक बार जो है चेक जरूर से करवा लीजिएगा, क्योंकि कई बार ना लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं तो है हम, बट ड्राइव जो है वो वेस्ट हो जाती है क्योंकि गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। सो अभी के अभी ये आप वेलवलीन के AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस पर जो आपको सलवा रोड पे मिल जाएगा, 150 इयर्स का ग्लोबल ट्रस्ट है एंड आपको वहां पर वेलवलीन के सारे जेन्युइन प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट आपको मिलेगा जिससे आपकी गाड़ी जो है वो पूरी सर्विस हिस्ट्री आपको आपकी फिंगर टिप्स मिल जाएगी, यानी कोई पेपर का झंझट नहीं। तो जल्दी से जाइए वेलवलीन पे अपनी गाड़ी को चेक करवाइए। फिलहाल बर्थडे बॉय सोनू निगम का एक अमेजिंग वाला गाना मैं मूवी का टाइटल ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम,
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें।
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: तो जी अपने वीकेंड को एक पंजाबी मोड हमने दे दिया एबी डिलन की आवाज में। ये अमेजिंग वाला ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आप मेरे साथ लाइफ मस्त है एंजॉय कर रहे थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ लाइफ मस्त है शो एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। ऑफ कोर्स देखिए, आपका वीकेंड जो है वो अगर दस्तक दे सकता है तो मेरा नहीं दे सकता क्या? तो बस अब मैं यहाँ से जाऊंगी और उसके बाद जो है कल वापस आऊंगी टेक वाला शो आपके लिए लेकर। हाँ जी, टेक टॉक पर बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी की, लेकिन मस्ती का मजाक का तड़का मार के। तो देखिए यार, रेडी हो जाइएगा अपने वीकेंड को और ज्यादा हैपनिंग बनाने के लिए। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा जाते जाते कहती हूँ, आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, सनस्क्रीन जरूर से लगाइएगा एंड मुझे ना याद करते रहिएगा। बाकी 3311063 ये जो है हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर अगर आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं जो भी आपका मन जाए। एंड बाकी अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार कशिश हमें जो है कंटेंट भी कंज्यूम करना है, आपका फन और अच्छे से एंजॉय करना है, सो यार आप रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत अमेजिंग अलग अलग टाइप का कॉन्टेंट जो है वो मिलेगा। आपको जो है वहां पर इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट मिलेगा, फनी कॉन्टेंट मिलेगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कतर में कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरीके से आप अपना वीकेंड जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए रेडियो ऑलिव कतर की इंस्टाग्राम हैंडल पर, बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल पर, और वहां पर जाकर जो है जल्दी से फॉलो बटन दबा दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड बस इंजॉय करते रहिए। मैं चलती हूँ यहाँ से, आपको ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है उसके साथ यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ। इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश को याद रखिए। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Ye gana

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। Today is the day, July 30th, with the opening of Safari Hypermarket's expanded showroom at Isdan Mall, Al Garafa, where you can win an MG3 car through a lucky draw by Visit and Win promotion. Just visit Safari Hypermarket, that's it, and you can win a brand new MG3 car 2026 edition absolutely free. You can also get many products at amazing prices on the occasion of the expanded showroom opening. Don't miss this celebration. Visit Safari Hypermarket. It is Isdan Mall, Al Garafa.
3: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे

शान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: टुडे इज द डे, जुलाई 30th, विद द ओपनिंग ऑफ सफारी हाइपरमार्केट्स एक्सपैंडेड शोरूम एट इस्दान मॉल अलगराफा, वेयर यू कैन विन एन MG3 कार थ्रू अ लकी ड्रॉ बाय विजिट एंड विन प्रमोशन। जस्ट विजिट सफारी हाइपरमार्केट, that's it, and you can win a brand new MG3 car 2026 edition absolutely free. You can also get many products at amazing prices on the occasion of the expanded showroom opening. Don't miss this celebration. Visit Safari Hypermarket Isdan Mall Algarafa.
4: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
5: Main hoon Ali Kapoor, video

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. Is the day July 30th with the opening of Safari Hypermarket's expanded showroom at Isdan Mall Al Gharafa, where you can win an MG3 car through a lucky draw by visit and win promotion. Just visit Safari Hypermarket, that's it, and you can win a brand new MG3 car 2026 edition absolutely free. You can also get many products at amazing prices on the occasion of the expanded showroom opening. Don't miss this celebration. Visit Safari Hypermarket, Isdan Mall, Al Gharafa.
1: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar. Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back-to-back gaane.

0: अब सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM और ऑलिव रिचार्ज में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और बांध रखी है तो कसके बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे और ढेर सारे किस्से खबरें कहानियां शेयर करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं, मगर आप अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बात बोलते हुए हम भी जरा शो की शुरुआत करते हैं गानों के साथ। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम,
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें।
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे।

0: शाहरुख खान ने एक मूवी में बोला था कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सनरीटा, मगर बड़े बड़े इवेंट्स में भी काफी बढ़िया बातें हो सकती हैं। अगर आपने नहीं सुना तो मैं बताऊंगा। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई HCL एक कंपनी है इंडिया में, चेन्नई में उनका जो है एनिवर्सरी इवेंट चल रहा था, और जैसे ही उनके CEO स्टेज पर आए, जो लोग थे वहां पे, जो एम्प्लॉयज थे, वो चिल्लाने लगे कि वी वांट रेज, हमें हाइक चाहिए, हमें हाइक दो करके लोग वहां पे चिल्लाने लगे। काफी सेलिब्रेटरी इवेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो गया मैनेजमेंट के लिए, मगर उन्हें हाइक मिला नहीं मिला ये तो हमें नहीं पता चला, मगर सोशल मीडिया में जरूर हलचल हुई है। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। जाकिर खान के स्टैंड अप में उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि जितना काम लड़के बताते हैं लड़कियों को कि वो कर रहे हैं, अगर उतना काम सही में किया होता तो अर्थ और मास के बीच में आज रोड होती रोड। सिमिलरली कभी कभी मैं कहता हूँ कि भाई कंपनियां जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करती हैं कि भाई ये करना है वो करना, नहीं तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, थम जाओ भाई, थम जाओ, सांस लो जरा यार। दुनिया नहीं बदलने वाली ऐसे। तो मैंने रिसेंटली एक टेड टॉक देखा था जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जो है बता रहे थे कि देखो भाई आपके प्रॉब्लम्स के बारे में आप क्रिप करोगे, ये करोगे वो करोगे, तब भी अर्थ वैसा है, आप काम करोगे तब भी अर्थ वैसा है, आप नहीं करोगे तब भी अर्थ वैसा है। सो बेसिकली हमारा एफर्ट हम डालेंगे तो हमारे आसपास की चीज़ें बदलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं डालनी चाहिए या फिर निहिलिस्टिक होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी अननेसेसरी हम जो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं चीज़ों के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, जो है उसे वैसे ही रखो यार, क्यों फालतू में प्रेशर बढ़ाना है लोगों का। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।

सोच के देखिए, जब कोई जेन्युइनली एफर्ट्स डालता है आपके लाइफ में रहने के लिए, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करता है जैसा आप डिजर्व करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है ना हमें। सिमिलरली जब हमारे गाड़ी को भी हम ऐसा केयर देते हैं तो गाड़ी भी बढ़िया रहती है और हमारी लाइफ भी स्मूथ चलती है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे मैं बता दूं कि अभी के अभी नहीं तो आराम से फुर्सत के साथ भी आप वैल्वोलिन AMTC पर जा सकते हैं, जहां पे आपको प्रीमियम क्विक सर्विस मिल सकती है। सलवार रोड पे है वैल्वोलिन AMTC, और उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं जो जेन्युइन वैल्वोलिन लुब्रिकेंट्स, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं, ताकि आपकी गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो टॉप नॉच रहे। उसके साथ साथ मैं एक नंबर बताता हूँ, आप कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर और बात कर सकते हैं, और बात करते बोलना कि रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। तो नंबर है 7765 5954, 7765 5954, और आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे जो है सलवार रोड पर वैल्वोलिन AMTC। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि भाई यहाँ जाके अगर आप ऑयल चेंज करवाते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया वैल्वोलिन मर्चेंडाइज भी मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे एक डिजिटल कार पासपोर्ट है। ANPR टेक्नोलॉजी से आपके गाड़ी की कंप्लीट मेंटेनेंस हिस्ट्री जो है मेंटेन कर सकते हैं। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया बात बता दूं मैं आपको। अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए। कतर एयरवेज जो है काफी बढ़िया प्रमोशनल ऑफर्स लेकर आया है आपके लिए। मैं कुछ बता देता हूं आपको। 20% आप सेव कर सकते हैं प्रीमियम कैबिन्स में, 25% सेव कर सकते हैं इकोनॉमी क्लास में, और आपको 50% बोनस एवियोस मिल सकता है हर कैबिन में, वो भी प्रिविलेज क्लब मेंबर्स के लिए। ये ऑफर जो है आज तक अवेलेबल है, यानी कि आज लास्ट डेट है 30 जुलाई 2026। अगर आप बुक करते हैं तो बहुत बढ़िया है। ट्रैवल डेट जो है 10th दिसंबर तक का होना चाहिए, और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ऑब्वियसली इसमें अप्लाइड है। और यही बात बताते हुए हम इधर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हमने लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

जो तुझको देखा आसमां में चांद था नहीं, कहीं पे छुप गया के कहता लगता नहीं, इससे हसीन मैंने देखा कहीं कुछ के लोग यूं ही

0: आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। याद करिए, 2 साल की उम्र में आप क्या करते थे। आप सोचोगे कि सुदेव ये क्या बिजार सवाल है, कैसे याद होगा कि 2 साल की उम्र में हम क्या करते थे। हमें याद नहीं होगा, मगर 2 साल की उम्र में एक लड़के ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता, वो भी एक नहीं 2। मैं बात कर रहा हूँ एक टर्किश बच्चे के बारे में जिसका नाम है जैन। उसने 37.29 सेकेंड्स में 5 बैंक शॉट्स कंप्लीट किए बिलियर्ड्स में, एंड ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू परफॉर्म अ डबल बैंक शॉट, कंप्लीटिंग द अचीवमेंट एट 2 years and 305 days ओल्ड। और जैन के जो पापा हैं वो ऑलरेडी टर्की में काफ़ी फेमस एक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट हैं और मोटरसाइकिल राइडर भी हैं, और उन्होंने बचपन से ही, मतलब बचपन की बात क्या कर रहा हूँ मैं यार, जब वो उससे ज़्यादा छोटा था तब से ही धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट ओरिएंटेड चीज़ें वो सिखाते थे। और जैन के बहुत सारे फोटोज और वीडियोस भी लोगों ने देखे हैं जिसमें वो छोटे बाइक में बैठा है, इक्विपमेंट संभाल रहा है, ये सब। और ये जो स्टोरी है इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत ही जल्दी या फिर बहुत ही छोटी उम्र में हम कोऑर्डिनेशन और इन सब चीज़ों के बारे में जब प्रैक्टिस करवाते हैं तो शायद बच्चे बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों में स्किल्ड हो सकते हैं। 2 साल की उम्र में जैन ने जो है सिर्फ पूल टेबल में खेलना ही नहीं सीखा, बल्कि उसके शॉट्स को मेजर किया गया था, वेरीफाई किया गया था, ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया था। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम,
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें।
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे।
3: ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुधीर रेडियो ओनली 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं बता दूं कि आप गाड़ी सीधा चलाते हुए जाइए वैल्बलिन AMTC सलवा रोड पर, वहां पे आपको ट्रेंड एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो सिर्फ जेन्युइन वैल्बलिन लुब्रिकेंट्स, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं ताकि आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस एकदम बढ़िया रहे। उसके साथ साथ वहां पे डिजिटल कार पासपोर्ट है, ANPR टेक्नोलॉजी से आपके व्हीकल का जो कंप्लीट मेंटेनेंस हिस्ट्री है वो मेंटेन किया जा सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप अभी जाके वहां पे ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको एक वैल्वोलिन मर्चेंडाइज भी मिलेगा। एक नंबर मैं देता हूं, आप उस नंबर को नोट कीजिए और कॉल कीजिए, और कॉल करते हुए बोलना कि रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। तो नंबर है 7765595 7765595। तो आज ही कॉल कीजिए और विजिट कीजिए वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड पे। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और चले जाऊं, फिर से स्क्रैच से शुरू कर लूं करके? अगर आपने ऐसा सोचा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम में से हर कोई ऐसा कुछ कभी ना कभी सोच ही लेता है। मगर जापान में जो है ये कर भी सकते हैं, और ये करने के लिए, इस चीज को एनेबल करने के लिए कंपनियां तक हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जोहात्सु। इसका मतलब है आप इंटेंशनली आपके ओल्ड लाइफ से, पैटर्न से निकल के बाहर कहीं और जाना चाहते हो और एक नई जिंदगी फिर से शुरू करना चाहते हो। और कुछ ऐसे नाइट मूविंग कंपनीज हैं जो आपको काफ़ी जल्दी और डिस्क्रीटली मूव कर देते हैं। अब कोई भी इशू हो सकता है, डेप्ट हो सकता है, अब्यूज हो सकता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर एक ओवरवेलमिंग सोशल प्रेशर हो सकता है जिससे इंसान को लगता है कि यार बस यहाँ से जाना है मुझे। और एक एडल्ट जो है वॉलंटरीली डिसअपियर हो सकता है। प्राइवेसी लॉ जो वहाँ के हैं वो प्रिवेंट करते हैं रिलेटिव्स को ढूंढने से कि भाई बंदा कहाँ चला गया। और बाहर से देखने में ये काफ़ी एक अनसॉल्व मिस्ट्री लग सकती है, मगर जो बंदा जा रहा है उसके लिए ये स्क्रैच से सब कुछ फिर से शुरू करने का एक मौका है। और जोहात्सु जो है एक लीगल पाथ ऑफर करता है एक इंसान को एक नई शुरुआत करने का। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: कम देर लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज,
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

यार बहुत सारी चीजें देखी हैं दुनिया में, मगर ये दिन भी आ जाएंगे कभी सोचा नहीं था। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे काफी फ्यूचरिस्टिक बात मैं बताना चाहूंगा आपको जो आज की प्रेजेंट जिंदगी में हुई है, प्रेजेंट लाइफ में हुई है। तो वेडिंग, हम जानते हैं कि भाई शादी जो है एक ऐसा एक सोशल स्ट्रक्चर है जिससे इंसान बचने की कोशिश कर रहा है मगर बच नहीं पा रहा है। मेरे से भी कई लोग बोल रहे हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले। तो

0: काइंडली मम्मी ने मुझे एक पोस्ट भेजा जहां पे रशिया में दो रोबोट्स ने शादी कर ली, रॉबर्ट और मटिल्डा, ये दोनों जो हैं रोबोट स्पाउसेस हैं। इन्होंने वाउज भी एक्सचेंज किए जहाँ पे इन्होंने बोला कि वी विल सपोर्ट वन अनदर थ्रू एवरी अपडेट करके एंड विल रिमेन रिलायबल पार्टनर्स थ्रू ऑल ऑफ लाइफ्स एल्गोरिदम्स। और ये स्पेक्टिकल देख के सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं कि भाई सब तो ठीक है मगर उम्मीद करते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर बग ना हो करके। काफ़ी अलग लेवल पे जो है चीज़ें जा रही हैं। मम्मी मुझसे यही कह रही हैं कि रोबोट्स तक शादी कर रहे हैं, तू कब कर रहे हैं करके। अब देखिए ये तो एक अनसॉल्व मिस्ट्री रहेगी। फिलहाल यहाँ पे गाने प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम,
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें।
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे।

0: बाबा का लव इश्क बबुआ।
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करे और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाए। स्मार्ट शॉपिंग करे, रिवॉर्ड पाए, ज्यादा मुस्कुराए, सिर्फ लुलु हाइपरमार्केट में।
3: लुलु, where the world comes to shop.
4: Just feel like you're home.
5: Only laga aur ho ja recharge.
1: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बहुत जल्दी वक्त निकला, पता भी नहीं चला। और मैं कहना तो चाहूंगा कि हम कल मिलेंगे, मगर कल मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब मिलेंगे सीधा सैटरडे दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा कि वीकेंड आ रहा है, तो एंजॉय कीजिए, मस्त तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने खास लोगों को खुश रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, और मैं था आपका मेजबान सिद्धे। जियो बिंदास।

0: is the day, July 30th, with the opening of Safari Hypermarket's expanded showroom at Isdan Mall, Al Gharafa, where you can win an MG3 car through a lucky draw by Visit and Win promotion. Just visit Safari Hypermarket. That's it. And you can win a brand new MG3 car 2026 edition absolutely free. You can also get many products at amazing prices on the occasion of the expanded showroom opening. Don't miss this celebration. Visit Safari Hypermarket, Isdan Mall, Al Gharafa.
1: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

अभी चलो। अगर आपको कोई लॉन्ग ड्राइव पे नहीं लेके जा रहा तो सिमरन को

जी मैं क्या कह सर आपका आज का दिन जो भी है दिल खोल के बोल दो और मेरे लिए कुछ बोलना चाहते हो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप इतने दिन से इतने सारे मैसेजेस भेज रहे हो मेरे लिए भेज रहे हो यार। देखो ये चार घंटे मैं आपको अटेंशन देती हूँ, आपके चार घंटे मुझे अटेंशन दीजिए। अपने पूरे दिन के बारे में जब बता रहे हैं तो मेरे बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। 3311106 पर बहुत सारी गल्ला करेंगे अपा म्यूजिक देना।

0: the day, July 30th, with the opening of Safari Hypermarket's expanded showroom at Isdan Mall, Al Gharafa, where you can win an MG3 car through a lucky draw by Visit and Win promotion. Just visit Safari Hypermarket. That's it. And you can win a brand new MG3 car 2026 edition absolutely free. You can also get many products at amazing prices on the occasion of the expanded showroom opening. Don't miss this celebration. Visit Safari Hypermarket, Isdan Mall, Al Gharafa.
1: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
2: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 rials growth पर पाइए एक coupon.
2: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible हैं.
3: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
4: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है
5: सलवा रोड पर वैल्वोलिन एएमटीसी क्विक सर्विस और नो टेंशन
4: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई
5: अरे भाई वहां ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं
0: विजिट वैल्वोलिन एएमटीसी सलवा रोड या कॉल करें 7765954 वैल्वोलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी
6: Hi, Radio Olive.
7: Radio Olive.
6: 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
7: Shah Rukh Khan.
8: I'm in number one. Radio Olive.
9: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
10: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय. मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
11: आरजे सिमरन के साथ
12: Zabardust evening. Make you drive golden with.
13: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
14: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.
15: Just

0: सेट है और आप लोग भी सेट हो गया ना, आपका काम खत्म और आप लोगों को यहाँ से एंटरटेन करने का मेरा काम जो है वो शुरू होता है। 5:17:55 स्टूडियो की घड़ी पे
1: टाइम चेक। Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
0: So, tayar ho is weekend ki ride ke liye? Oh baby, dekhna. जो है आप लोगों के लिए गाने में प्ले करूंगी एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। मतलब जिस तरीके से आप वॉइस नोट्स भेज के मेरा स्वागत करते हो ना भाई, सच्ची उतना होता है कि यार जितना मैं आपका करती हूँ उतना आप मेरा करो। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपका कर रही हूँ तो आप भी मेरा करो यार, मतलब भेजो मुझे उतना ही प्यार आप मैसेजेस के थ्रू, क्योंकि आप रेडियो पे आके तो बोल नहीं सकते हो, रेडियो पे बोलने का काम मेरा है, लेकिन आप मुझे वॉइस नोट्स जरूर भेज सकते हो यार, ठीक है। वीकेंड का क्या प्लान है वो भी आप बता सकते हैं एंड उसके साथ साथ एक चीज जो है वीकेंड के प्लान के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कल मैंने एक ऐसा काम किया जहां पे मुझे लगा कि हाय चैट जीपीटी ही मेरी सच्ची दोस्त है यार। सो मैं एक जगह पे गई, वहां पर कुछ गेम्स थी और ऐसी गेम्स थी खेलने के लिए जहां पर वो गेम मुझे खेलनी नहीं आती थी। उसमें पहली बार मैंने एक गेम के बारे में सुना जिसका नाम था जकारू। आई होप मैं सही बोल रही हूं और आपने इसके बारे में सुना, पर मैंने कभी नहीं सुना था। सो अब ये गेम हमारे पास सामने आ चुकी है, ओके अब हमको नहीं पता है गेम कैसे खेलनी है, हमारे पास यही ऑप्शन है। सो हमने चैट जीपीटी को उसका फोटो खींच के भेजा और चैट जीपीटी ने हमको सिखा दिया कि भाई तुमको गेम कैसे खेलनी है। दो इसको डाइस के साथ खेलते थे, डाइस हमारे पास थी नहीं तो हमने ताश के पत्तों के साथ खेली। क्या फायदा होता है यार कभी कभी टेक्नोलॉजी का। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे लुना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: पहुंच जाते हैं मोहब्बत में पाकिस्तान, उनको पता भी नहीं है कि लड़की प्यार करती है कि नहीं करती है। वो जो ब्लैक कुर्ता पठानी सूट एक्चुअली उन्होंने पहना होता है, शिद्दत होती है मोहब्बत वाली। 5:33, 12 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है। ओए हैप्पी वाला वीकेंड है। ये
1: हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा।
0: सावन तो है नहीं यार, सावन आने वाला था, बारिश आने वाली थी, दो दिन से मैं देख रही हूँ लेकिन कोई ऐसा सीन जो है वो नहीं लग रहा। बट पिछले दो दिन से मैंने शाम के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा गर्मी का जो एकदम वैसा रहता है ना प्रहार, वो नहीं था, वो शाम को थोड़ा सा इजी था वेदर। अभी वीकेंड का टाइम है, बताइए आप लोगों के क्या प्लान्स हैं आज के। और शाबाश जी, थैंक यू सो मच यार, शाबाश जी का क्या कहना सुनते हैं। थैंक यू,
2: आप आ गई है बस, अभी गाने अच्छे ही अच्छे गाने मिल रहे हैं। शाबाश जी बोल रहा हूँ।
0: थैंक यू,
2: हाँ
0: जी,
2: पहले गाना बहुत अच्छा है,
0: शुक्रिया।
2: वेलकम बधाइयां आपको, बधाइयां। चकले फटे बस, अभी 9 बजे तक मूड जाना खुशगवार रहेगा।
0: ओके,
2: और नाइस गाने डिस्प्ले होंगे। मैं अभी जरा गाड़ी ड्राइव करने के लिए जा रहा हूँ बस।
0: हाँ जी,
2: वेलकम, बहुत बहुत बधाइयां। 100 कलोनी 100 मिलियन 1000 किलो
0: 100 किलो होता है यार।
2: लव प्रोग्राम, और मैं सिरों जी एज ए रिस्पेक्ट ऑफ वेरी वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर
0: यार,
2: प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
0: अरे यार आप लोग इतनी दुआएं देते हो, इतना सारा प्यार करते हो ना, उसके लिए क्या ही बोलूं यार मैं। आई लव दिस ट्रैक, इस गाने की वाइब इतनी प्यारी है। बामुलाई

0: हाँ जी, सब चले जाते हैं यार, कोई साथ हमेशा तो नहीं रहता, लेकिन जितनी देर वो आपके साथ है बस प्यार से रहना। कोई कोई कोई किसी को ड्रामा मत देना यार। 5:50 और 40 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। और लाइफ में एक चीज याद रखना, करना कभी मत भूलिएगा, है ना। और एक चीज, कतर में रहते हैं तो मत भूलिएगा। देखो, हम हर रोज बात करते हैं, यू नो, कतर में कुछ रूल्स के बारे में जिसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो रहते हैं उनको पता है, और कभी कभी जो रहते हैं उनको भी ये चीज पता नहीं होती, लेकिन जो नए हैं उनको तो बताना जरूरी है। तो क्या होता है कि पब्लिकली जब भी ये कपल्स वगैरह आप लोग जा रहे हैं, सो क्या होता है कि अपन बढ़िया लोकेशन होती है, बढ़िया होता है मामला, सब ऐसा इमोशनल भी हो जाते हैं, हग एंड ऑल, ये चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है पब्लिकली, अगर आप हो, आप अफेक्शन जो है वो इस तरीके से शो नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि बाकी लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, आपका कुचू पुचू चल रहा होता है लेकिन सामने वाले को अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप पब्लिकली जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ये जो प्यार मोहब्बत है वो थोड़ा लाइक दूर दूर से ऐसे, ठीक है। तो बस उतना ध्यान रखिएगा, दैट्स इट, इतना ही बताना था, रिमाइंडर देना था। और आज सोनू निगम का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो एंजॉय करो यार।
1: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम,
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें।
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे।

0: ਕਿ ਦਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ
1: ਕਿਚਨ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਚਿਕਨ ਕੁਕੜੂ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਕਾ ਇਲਾਜ ਚਿਕਨ ਕੁਕੜੂ ਤੂੰ
0: जब भी हम पूरा हफ्ता काम करते हैं तो आप ऐसा भाग भाग के भी ऐसे होता है कि भाग भाग के खाना होता है, कभी कभी आपके मील स्किप हो जाते हैं, लेकिन वीकेंड का टाइम है जब आप अपने आप को टाइम देते हो, अपने पेट की आवाज को जो है वो क्या कहते हो कि पैम्पर करते हो कि हाँ बेटा तेरे को ये खाने को मैंने चोरों खिलाते हैं। सोना से याद आया हमारी लिसनर सोना।
2: हेलो सिमरन।
0: हाय।
2: Wonderful weekend vibes and keep the josh. Happy weekend, Simran.
0: Thank you. You too.
2: Love, one quintal. Keep going, keep rocking.
0: Thank you so much. ये जो अंग्रेजी में बोला है अपने लव वन क्विंटल, उसके लिए बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, लेकिन लव यू 100 किलो बना करो यार, दैट्स सिमरन, ओके, लव यू 100 किलो। एंड अगर आपने अभी तक मुझे मैसेज नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा, क्या गुस्सा नाराजगी है, प्यार खत्म हो गया आपका मेरे लिए, फटाफट से मुझे मैसेज करो 3311063 पर, आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। आज वीकेंड है तो मौसम के क्या हाल है रात में। अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस, विंड जो है 14 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी 45 है, ह्यूमिडिटी में देख रही थी, सो 7 बजे के अराउंड 56% ये ह्यूमिडिटी होने वाली है, रात के 9 बजे 60% ये ह्यूमिडिटी हो जाएगी विद 36 ऑफ टेम्परेचर, एंड 11 o'clock रात को 63% ह्यूमिडिटी जो है वो हो जाएगी और टेम्परेचर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। सो या मुस्कुराइए, समर है, मुस्कुराइए, जुलाई खत्म है, और सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर के जरिए जियो विंदास एंड हैप्पी वीकेंड। ये गाना आजकल मुझे काफी अच्छा लग रहा है, खौसला रघु, ये दो लड़के हैं बहुत ही कमाल का गाते हैं।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Is the day July 30th with the opening of Safari Hypermarket's expanded showroom at Isdan Mall Al Gharafa, where you can win an MG3 car through a lucky draw by visit and win promotion. Just visit Safari Hypermarket, that's it, and you can win a brand new MG3 car 2026 edition absolutely free. You can also get many products at amazing prices on the occasion of the expanded showroom opening. Don't miss this celebration. Visit Safari Hypermarket, Isdan Mall, Al Gharafa.
2: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
3: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
3: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
4: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
3: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
5: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
6: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
5: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
6: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
5: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
7: हाय, मैं हूँ सारिका.
2: आप
7: मुझे सुन रहे हैं रेडियो
2: ओलिव 106.3. ओलिव सुनो, नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
9: साथ. Zabardast evening, make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
6: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर 1 आरजे सिमरन के
8: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: गया, आप कहाँ पे रॉक कर रहे हो? सिमरन कौर तोड़े नाल और बात करते हैं इस वायरल ट्रेंड की।
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल, क्या बात है, आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल, ये बात है।
0: तो बाहरले मुल्क के लोगों ने चलाया ट्रेंड और उस ट्रेंड में वो ये बोलते थे,
2: किनो किना है ये
0: सो आप जाके किसी को बोलते थे क्या ना क्या, तो सामने वाला करता था वही है। ओके सो ये ट्रेंड जब इंडिया में पहुंचा तो वो हो गया,
3: चाचा वास्तविक ना हुई है, वास्तविक ना हुई है
0: तो क्या ना क्या हुई से हो गया वास्तविक ना हुई है। और जो इंडिया में कर रहे हैं लोग इसको बोल रहे ना, तो लोग ऐसे ऐसे स्कैंडलाइज हो रहे हैं कि भाई तुम क्या बोल रहे हो। इनफैक्ट जब आप भी किसी को, इनफैक्ट मैंने आज क्या किया था, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को जो था वो वॉइस नोट भेजा, बोल रहे ये क्या है, तो आपको समझाना पड़ेगा ये ट्रेंड चल रहा है। सो अभी मैं आपको बोल रही हूँ तो आप मुझे हुईया करके वॉइस नोट भेजो 3311106 पर। एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं, I love this track, Olive Rewind में।

0: वीडियो वाले को कहते रहो जी ओ बिंदास गिर गिर गया
1: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas. टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्नल ग्रुप नाउ
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है रेडीमेड गार्मेंट साड़ी चूड़ीदार फुटवेयर लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाए स्मार्ट शॉपिंग करें रिवॉर्ड पाए ज्यादा मुस्कुराए सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में
2: लुलु वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: ये भी तो थोड़ा सा प्यार है कि आप बोले खेने गेटे हुई हैं तो सामने वाला आपको बोल के भेजे
1: जो बिंदास हुई हैं सिमरन क्रेजी यार।
0: आई नो राइट, थैंक यू सो मच। ये ट्रेंड चल रहा है तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी पूछ लेती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। किस बहुत सारे लोगों ने मुझे हुई हैं लिख के भेजा है, तो ऐसे नहीं होता, बोलना होता है यार आपको, तभी तो ट्रेंड होता है। बोल के आप तब जब तक नहीं बताओगे तो लिख के तो वो वाइब जो है वो सेट हो नहीं पाएगी। और गाड़ी की वाइब तब सेट होती है जब सब कुछ टॉप नॉच हो और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और गाड़ी की आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तभी गाड़ी को लेके जाते हैं जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, राइट। तो प्रॉब्लम आने से पहले ही अपनी गाड़ी को जो है, अपनी कार को प्रीमियम केयर दो। वेल्वोलिन के AMTC का प्रीमियम क्विक सर्विस जो है वो आपको मिल जाएगी सलवा रोड पर। और अगर आप इसका ऑयल चेंज करवाते हैं ना तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा, फ्री गिफ्ट मिलेगा, तो वो भी आप करवा सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक नंबर दे रही हूँ उस पर आप कॉल कर लीजिएगा 7765 5954। एक बार फिर से 7765 5954 पे आप कॉल करिए और बोल दीजिएगा कि सिमरन ने बोला कॉल करने के लिए, ठीक है। आप इनके शोरूम विजिट कर सकते हैं एंड यस अपनी कार का चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि इनकी एक और भी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको हर रोज़ बताती हूँ। ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट है जो कि आपकी कार की पूरी सर्विस हिस्ट्री को सेव रखता है, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। सिमरन कौर आपके साथ, जी हो बिंदास
2: रेडियो

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: The day, July 30th, with the opening of Safari Hypermarket's expanded showroom at Isdan Mall, Al Gharafa, where you can win an MG3 car through a lucky draw by Visit and Win promotion. Just visit Safari Hypermarket. That's it. And you can win a brand new MG3 car 2026 edition absolutely free. You can also get many products at amazing prices on the occasion of the expanded showroom opening. Don't miss this celebration. Visit Safari Hypermarket Isdan Mall, Al Gharafa.
2: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
4: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.

कैसे बोले थर्सडे रात्री हमको नींद नहीं आती। थर्सडे रात्री हमको इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वीकेंड है। ओए होए आपके साथ और ट्रिविया शिविया में आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले इस फिल्म का नाम है

बिल्कुल, फिल्म का नाम है मन। सो मन की बात करें, सो जो मनीषा कोरेला वाला रोल था वो तब्बू और नंदिता दास के पास गया था, एंड तब्बू ने तो इस फिल्म को साइन भी कर लिया था, ओके, लेकिन तब्बू ने बाद में रिजेक्ट कर दिया। इनका फोटोशूट भी हो गया था आमिर खान के साथ, लेकिन तब्बू ने बोला कि यार वो आमिर खान से 3 inches लंबी है, उनकी हाइट जो है वो ज्यादा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फाइनली ये रोल जो था वो मनीषा कोरेला के पास आ गया। सो नंदिता दास जो थी वो कंफर्टेबल नहीं थी ऐसा कमर्शियल फिल्म करने के लिए, सो या। और उसके साथ अगर मैं बात करूं, अनिल कपूर इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस बनाते हैं। ये पहला टाइम था जब वो आमिर खान के साथ किसी फिल्म में काम कर रहे थे। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो कि आपको वापस लौट के बताऊंगी, लेकिन उससे पहले गुलाबी रंग किसने पहना हुआ है अभी के अभी? फोटो भेजो मुझे, फोटो भेजो, क्योंकि गुलाबी साड़ी वाला गाना आ गया है दोस्तों।

0: 2026 million reals dream.
1: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million reals cash prizes.
0: Jeetne ke char raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 reals growth par paiye ek coupon.
1: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
0: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra coupon. Aur mega draw ticket.
2: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, यू बिंदास.
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
4: रेडियो ओलिव, नंबर वन.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

बहुत प्यारी लग रही थी इसमें रानी। मन फिल्म के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इस गाने में जो थी रानी मुखर्जी थी, उन्होंने गेस्ट अपेयरेंस दी थी, बहुत ही प्यारा डांस किया था यार, खूबसूरत भी बहुत लगती है मेरे को रानी मुखर्जी। और अगर इस फिल्म की बात करें तो ऐश्वर्या राय के पास भी जो प्रिया का रोल था वो आया था। आमिर खान ने इस फिल्म को इसीलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि जो इस फिल्म के डायरेक्टर इंदिरा कुमार थे वो उनके अच्छे दोस्त थे और उससे पहले उन्होंने उनकी दो फिल्मों में काम किया था, दिल एंड इश्क। बट आमिर खान जो थे ना इस फिल्म के दौरान, जो मन फिल्म के दौरान, उनके ना डायरेक्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए और उसके बाद उन्होंने दोबारा उनके साथ कभी काम नहीं किया। बट इंदिरा कुमार जिनकी मैं बात करूँ, जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उन्होंने सोचा था कि ऐसी इंटेंस और मैं इमोशनल फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि ना पहले जो उनकी दो फिल्में थी इश्क, ओके, और मतलब इश्क फिल्म के बारे में ये बोला जा रहा था कि यार इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा थिन थी और बहुत ज़्यादा कॉमेडी डाल दी थी, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा काम करूंगा मैं दुनिया रुला दूंगा। सो ये फिल्म काफ़ी, इस फिल्म का एक्चुअली म्यूजिक बात करें तो म्यूजिक बहुत ज़्यादा हिट रहा था। एंड बट म्यूजिक हिट रहने से एक बात ये भी कि कोई भी इसकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन नहीं थी, इधर उधर से मारी हुई कॉम्पोजिशन थी। सो या ये थे इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें जो कि मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन इस घंटे नेम गेम भी खेलने वाली हूँ और लेने वाली हूँ आप सबके नाम। सो तैयार हो जाइए अपना नाम सुनने के लिए।

0: हूँ रेडियो ओलिव करके इधर जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
3: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
1: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया, बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ. Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हाँ जी, अब बात करते हैं
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: बहुत प्यारी चीज पढ़ी थी आज मैंने कहीं पे, कहते कि मन में कुछ भर कर जियोगे तो मन भर के कैसे जियोगे। भाई क्या बात है यार। देखो यार, मन में हम बहुत सारी चीजें भर के रखते हैं, अंदर दबी रहती हैं कि यार ये करना है, ये होना है, बहुत कुछ चल रहा होता है अपने मन में। जब मन में भर के रखोगे ना तो फिर मन भर के नहीं जी पाओगे। तो मन में जो आ रहा है वैसे करिए आप अपनी लाइफ में। आप जैसे जीना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में करिए, तभी लाइफ है। एक ही जिंदगी मिली है, फन करना है यार, बस किसी का दिल नहीं दुखाना है यार। वापस दौड़ के नेम गेम खेलने वाली हूँ, उसके लिए तैयार हो जाओ।

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

47 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है, लेकिन आपका क्या नाम है? बस आपका नाम जानना चाहती हूँ और फिर मैं रेडियो पे बोल दूंगी। बस आपको मुझे अपना नाम लिख के भेजना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3। जी हाँ, 3311106 3। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम लिख के भेजना है। क्विकली चलिए मैं आप लोगों के नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। महमूद जी, हुजैफा जी, कृष्णा जी, बिश्नु जी, यूसुफ जी, बाबू जी, शाबाज जी, मास्टर जी, इरफान जी, लतीफुल्ला जी, पाली जी, थैंक यू सो मच, दानिश जी, थैंक यू सो मच, यासिन जी, थैंक यू सो मच, फारा चांद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, खेमराज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शाइस्ता जी, थैंक यू सो मच, जसीन जी, थैंक यू सो मच, बिस्मा जी, थैंक यू सो मच, मनोज कुमार, थैंक यू सो मच, मारूस जी, खिजर हयात खान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजो। नजीमा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हाय हेलो मत लिखो दोस्त। तौफिल जी, थैंक यू सो मच, सूरज खत्री जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, गणेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, इरफान जी, थैंक यू सो मच, इरफान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कामिल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हाजरा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, विद्या मोहन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नीमा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, निम्रा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिख के भेजिए 3311106 3 पर। सिर्फ और सिर्फ आपका नाम होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। उस्मान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के, एलवा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के, हुसैन जी, थैंक यू सो मच, सोना जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नौरीन जी, थैंक यू सो मच, वियान जी, थैंक यू सो मच, विद्या जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला दोस्तों, राकेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कोमल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड नरेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आप थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना लो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Hi, Radio Olive. 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive, I'm number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: हाँ जी, नुसरत साहब को सुन लिया। और अब हम खेलेंगे
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: अगर आप भी खेलना चाहते हो तो फिर इस एक चुटकी सॉन्ग को जरा ध्यान से सुनो और बताओ कौन सा गाना है ये। So, अगर आपको पता लगे गाना क्या है तो फिर लिखेगा मत, प्लीज लिखने की जहमत क्यों कर रहे हो यार, फटाफट से वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, उसमें आप गा भी सकते हो, अपनी कला के जौहर दिखा सकते हो, अपनी आवाज का जादू दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी आवाज का जादू नहीं दिखाना चाहते हो तो आप मुझे बोल के बता सकते हो यार कि गाना कौन सा है, और भेज दो 3311063 पर एक बार वापस से। इंतजार कर रही हूँ अब आप लोगों के मैसेजेस का, डोंट बी लेजी, रिकॉर्ड करके भेजना।

0: है ना।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो।
0: क्या बात है यार, बधाइयां बधाइयां। बहुत सारे पटाखे, जवाब बिल्कुल सही दे दिए, एक नंबर गाने आ रहे हैं।

0: ड्राइव करते करते ओवर थिंकिंग हो रही है तो ये गाना परफेक्ट है.
1: जिसके गाने सुन के सब भूल जाते हैं अपने गम.
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें.
1: बॉलीवुड के सुरों के सरताज सोनू निगम को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: काम करने के बाद आप लोगों को जितना डाउनर आया था मैंने सारी एनर्जी आप में ट्रांसफर कर दी है। और आप भी वीकेंड एंजॉय करिए, मैं भी वीकेंड एंजॉय करती हूँ, लेकिन इस वादे के साथ बेबी सैटरडे को शाम को 5 बजे फिर से होती आपसे मुलाकात बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत सारे अच्छे वाले म्यूजिक के साथ। अब आपको जो है वो कोई ऐसा ओवर थिंकिंग वगैरह नहीं करनी है, वो हमेशा मैं बोलती हूँ और मैं बोलूंगी, क्योंकि आजकल हम लोग ना हमको पता ही नहीं लगता है कि हम बहुत ज्यादा सोच ही रहे हैं और सोच ही जा रहे हैं बहुत देर तक, और खा रहे पी रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये जो टैब्स खुली हुई है ना आपकी ओवर थिंकिंग की, वो खुली है, तो उनको बंद कर दो, ठीक है, फन करो यार लाइफ दे विच। हैप्पी वीकेंड, खाने भी दे रो, ऐश कर दे रो, चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल में दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

Taipei. Club Olive. Club Olive Radio. 6.3 FM.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
2: रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम यू आर लिसनिंग टू क्लब ऑलिव.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

इंडिया के सितारे और शहबाद दे प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं। आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।